0: कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है।
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

0: दीवाना, अरे बाबा अरे बाबा करे क्या दीवाना, लड़का जब भी लड़की देखे गाई यही गाना, दिल दे देना दिल ले लेना।
1: Now that we have heard the song which is supposed to be different, how different you find out? Okay, funk funk funk the funk.

जो किस्मत है, तेरे तेरे नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।